ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੰਬ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ। ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦੇ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਿਮ ਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੋਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪ ਕਾਲ ਕੂਕਦਾ, ਮੌਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਕੰਬਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਾ ਸਕਣਾ ਵਾ? ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੱਕ ਟਕਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਘਾ ਦੀ ਗੰਢ ਲਈ, ਪਿਛਾ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਝੋਲੀ ਕਰ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਆ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਈ, ਪਰ ਟਕਾ ਤੇ ਘਾ ਦੀ ਗੰਢ ਨਾ ਚੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸੱਜਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਚਲਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ, ਤ੍ਰਿਲੋਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, ਲੋਧੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਘਾਈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ ਲੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਟਕਾ ਤੇ ਘਾ ਦੀ ਗੰਢ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਘਾ ਦੀ ਗੰਢ ਚੁੱਕੀ, ਟਕਾ ਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਅੱਗੇ ਨੰਗੇ ਚਰਨ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਘਾ ਦੀ ਗੰਢ ਚੁਕਾ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਗੋ ਸਿੱਖ ਮਨ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਘਾ ਦੀ ਗੰਢ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਲਈਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਲਿਆ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਘਾ ਦੀ ਗੰਢ ਮੈਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਿੱਖ ਘਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਜਿਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਘਾ ਦੀ ਗੰਢ ਚੁੱਕਣ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਘਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਘਾ ਦੀ ਗੰਢ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੀਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਮੰਗ, ਘਾਈ ਏ, ਵੱਧਦਾ ਘਾ ਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਟੇਕ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਘਾ ਵੇਚ ਕੇ ਪੱਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਟੇਕ ਨਾ ਲੈਣੀ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ, ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈਏ। ਇੱਥੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਵੀਂ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਨ ਪਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਿੜਕਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਪਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਿੜਕਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਸਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਦੀ ਭਟਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਸਨ ਤੇ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਫੂਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿੱਤੇਰੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਝੁਕਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਲੇਖੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸਾਫ, ਝੂਠ ਕੀ ਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ।
खैर मैं अर्ज करा गुरु हरगोबिंद साहब इन्हां कोल नूर जहां भी आके झुकी है साहब सच्चे पिता महाराज आप अमृतसर की धरती ते टिक गए बादशाह जहांगीर की मौत हो गई है इस सुखेवे समय साहब ने अपने प्यारियां नूं नवाजिया पीलीभीत गए डरौली गए भाई साधु रूपे नूं नवाजिया बेअंत सिखां ते कृपा कीती इत्थे गुरु हरगोबिंद साहब अमृतसर ने ते बादशाह जहांगीर की मौत हो गई है ते ओदा पुत्र शाहजहां तख्त ते आए इधर गुरु हरगोबिंद साहब पूरी तैयारी कीती है चार जंगा मेरे गुरु हरगोबिंद साहब ने लड़िया ने चारे जंगा विच जित होई है मैं जंगा का जिक्र कर दिया पहली जंग अमृतसर दी है इस जंग का कारण की इधरों लाहौर के हाकम भी शिकार खेडन आए ने ते इधरों गुरु के सिख भी शिकार खेडन गए ने लाहौर के हाकमां दा बाज गुरु के सिखां दे हाथ विच आ गया उन्होंने उस बाज नूं अपने कब्जे विच कर लिया है ते कहिंदे ने हाकम आए बाज खोना चाहते ने भाई वीर सिंह लिखते ने शिकार की एक नियम एक रीत है कि जे किसी कोल उड़दा पंछी किते काबू आ जाए ओदा हक है इन्हां ने कहा साडा बाज वापस करो ते सतगुरु के सिखां ने इनकार कर दिता उन्होंने एक गल कही तुहानू पता नहीं कि तुसी बादशाह की राया हो ओदी सल्तनत हो अगो सिखा ने आवाज दे के क्या नहीं असी तो गुरु नानक दी राया वा ना के किसे दुनिया दे बादशाह दी उन्हें क्या जंग दा पता जे सिखा ने क्या असी तो किन्ने देर दी तैयारी करके बैठे हाँ कुछ साडे वल आवे तो सही बाज लैके वापस आए हाकम लाहौर गए ने उन्होंने मुखलस खां नूं जाके एक गल कही सी अज सिखा ने साडा बाज खोया है ते विचलिया ने एक गल कही जिन्ना ने अज बाज खोया है ए कल नूं ताज नूं भी हाथ पाणगे अज बाज कल नूं ताज खोणगे पहली लड़ाई का कारण केवल एक बाज सी जे कोई सियाणा कहे लो जी एक पंछी पिछे लड़ पए गल पंछी दी नहीं गल जमीर दी स्वतंत्रता दी है गल गुलामी दियां जंजीरां कट्टण दी है उधर हाकम हजारां दी तादाद विच आए ने ते गुरु हरगोबिंद साहिब नूं पता है के बाज लियांदा होया हुण काम खाली जाना ने सतगुरु ने तैयारी कीती जिथे पिपली साहब अस्थान है इथे नाके लाए ने सिखा ने कह दिता महाराज के हाकम चढ़ के आ गया तीजे दिन जिवे अज जांगे ते परसों बीबी वीरो दी शादी है सतगुरु ने अपने सिखा नूं भेजिया मोर्चे बना के सिख लड़े ने चेते रखियो हिंदुस्तान दे इतिहास विच राजे महाराजे तो एक दूजे न लड़ते रहे ने पर ए पहली लड़ाई सी कि आम जनता जाग उठे ते हकूमत दे बरखराब लड़े पहली जंग सी अमृतसर जी जदों दबे हुए लोग उठे ने ते बादशाह दे विरुद्ध उन्होंने शस्त्र चुके इथे लक्कड़ दी तोप चली मेरे गुरु हरगोबिंद साहब दे सिख विद्वान कहिंदे ने 13 सिख शहीद होए ने कोई 13 की गिनती करदा कोई वध करदा जदों सतगुरु जित गए ने सारे परिवार नूं चबाल भेज दिता है भाई लंगाह दे कोल उस ढिलो सरदार की बड़ी वड्डी कुरबानी है ओदे खानदान दे विचों बघेल सिंह होया जिन्हें दिल्ली लाल किले ते केसरी निशान चुलाया उन्हें अपने घर रखे अज ओ अस्थान है चबाल जिथे बीबी वीरो का आनंद कारज किया गया लावां कीतियां गईयां साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जदों जंग जीती फिर अपने शहीद सिखां दे कोल गए ने एक एक सिख दे चेहरे नूं पूंजिया ते प्यार नाल भिज के कहा प्यारियो सतखंड परवान तुरे जांदे ने कई विद्वानां ने इहदा जिक्र नहीं कीता पर मेरा गुरु कैसी कृपा करदा है अचिनचेत लाशां दे विचों आवाज सुनाई दित्ती है कोई हुंगरां भरदा ते नाले नाल कही जांदा वाहिगुरु वाहिगुरु सतगुरु आवाज नूं देख के रुके ने खब्बे हथ की तकदे ने गुरु दे प्रेम विच भिजा सिख भाई मोहन जमीन ते पिया ते ओदे मुख विचों गुरु गुरु दी आवाज पई आउंदी है भाई मोहन ओ शरीर ओदा लत पाते खून दे नाल जदों खब्बे इनू टकिया ते सज्जों एक होर आवाज आई वाहिगुरु ते जदों साहिब ने उधर ध्यान कीता ते ओ भाई गोपाल पिया होया ये साडी तवारीख है कहिंदे ने गुरु हरगोबिंद साहिब ने दोनां दे चेहरे पूंजे ने इकट्ठियां नूं एक नूं खब्बे पासे एक नूं सज्जे पासे पा अपनी गोद विच रख लिया ते आवाज देख के कहिंदे ने बेटा मोहन
भाई गोपाल अपने नेत्र खोलो देख बेटा तुहानू कौन लैण आया है मैं तुहानू अपनी गोद विच रखिया है ते जदों दोनों ने अखां खोलियां ते दोनों दे नेत्र भर आए जबान विचो आवाज नहीं निकली ते साहब ने कहा मोहन गोपाल तुसी कर्म खंड विच पहुंचे हो क्योंकि कर्म खंड विच केवल सूरमिया नू साए कायर ते बुझ दिल कदी कर्म खंड विच पहुंच नहीं सकते साहब ने बाणी विच कहा कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोध महाबलसूर उथे सूरमे पहुंचते ने बेटा कुछ मंगो तो सही ते भाई गोपाल ने हाथ जोड़ लै कह लगा सतगुरु जो कुछ तेरे दर तो मंगिया सी ओ कुछ तो झोली विच पा दिते होर तेरे दर तो की मंगिए साहब ने पुछया की मंगिया सी आखदा सतगुरु दोनों जने असी इकट्ठे संगत विच बैठ के बाणी सुनदे सां इकट्ठे शस्त्र विद्या का अभ्यास करदे सां इकट्ठे तेरे लंगर की सेवा करदे सां ते एक दिन साडे दोनों का मन बनिया रह रात तो बाद अरदास कीती सी सतगुरु एक मेहर करी जिदन दुनिया तो जाइए उदन भी इकट्ठे जाइए ते जदो तुर लगीए उदन गुरु हरगोबिंद साहब तू अपने हथी सानू दुनिया तो विदया करदा हुण कहिंदे साडी अरदास नू भाग लगा गुरु हरगोबिंद साहब ने दोनों दे सीस घुट के अपने सीने न लाए ते साहब ने असीस दिती बेटा जाओ जीवन मरण तो मुक्त हो गए भगवान दास केरड चंदू दा रिश्तेदार सी ए नहीं सी गुरु हरगोबिंद साहब नू प्रवान करदा ए आया इने रोकया गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा भी तू बाज आ जा एवें अप शब्द बोल ना कहिंदे ने बाज किथे आवे इने कुछ लोग इकट्ठे कर लै कहिंदा देखो साडे वर्गा खत्री शब्द वरते ने किदे भैड़े साडे वर्गा खत्री पुत्र धियां ने घर वालियां ने गुरु बनिया फिरदा कहिंदा आओ हल्ला करिए इहदे पल्ले की ए इह गुरु बनिया फिरदा साडे वर्गा आम बंदा है ते सिखां ने कहिंदे इस मनुख की जबान टिकी ना इहने गुरु नानक साहिब की शान के खिलाफ बोलिया ते गुरु का सिख उठिया उन्हें कृपान लैके चटका के एक पासे चा कीता इहदे शरीर नू जल प्रवाह कर दिता दरिया के अंदर रोड़ दिता जदों इहदे पुत्र रतन चंद नू पता लगा ओ जलंधर पहुंचे उन्हें जाके अपनी फरियाद कीती इधरों एदा पुत्र रतन चंद ते चंदू दा पुत्र करम चंद इन्हां दोनों ने फौज चाड़ के लियांदी गुरु हरगोबिंद साहब ने दूजी जंग लड़ी ते दूजी जंग विच भी मेरे गुरदेव की जित हुई तीजी जंग जड़ी है नथाने की ढाब दी है गुरु के सिख भाई दयाल सिंह हरी दो घोड़े लैके आए एक का नाम दिलबाग सी एक का नाम गुलबाग सी जदों ये घोड़े लैके लाहौर की धरती से आए उथे बकरीद का मेला सी ते उतों के हाकम ने घोड़े खोले ने इन्हें आके फरियाद की सतगुरु साडे तो धक्के नाल घोड़े खोए असी दो घोड़े तेरी खातर लैके आए साहब ने हस के कहा तुहाडे पहुंच गए हुण असी अगो अपने आप ही लै आवांगे भाई बिधी चंद पहला घोड़ा ढाही बन के लिया है ते जदों घोड़ा लैके आया ते गुरु हरगोबिंद साहब ने इहदे ते चार बख्शां कीतियां सन ते इहने मंगिया सी कि सतगुरु का अंग साध का संग नाम का रंग निचा अपहंग दूजा घोड़ा ज्योतिषी बन के लिया ते जदों लैके पहुंचया तुर लगियां चाबियां अपने कोल सन ते दरोगे नू किले दे उस मालक नू एक गल कह के आया सी मैं गुरु हरगोबिंद साहब दा सिख हां सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब दा पहला घोड़ा ढाही बन के लगियां दूसरा घोड़ा ज्योतिषी बन के लगियां अज मैं दरिया विच छाल मार के एक घोड़ा दूजा लैके चला जे तुहाडे कोल दम है मालवे की धरती से आयो मेरा गुरु हरगोबिंद तुहाडी इंतजार करता होगा देखो कैसी निडरता है साहब कोल जदों घोड़ा लैके गया ते सतगुरु अगो लैण आए कह लगे बिधी चंद कुछ मंग इथे बिधी चंद ने कहा सी दातिया किसी चीज की कमी नहीं पर साहब ने कहा अगे चार बचन तू मंगे सन सतगुरु का अंग साध का संग नाम का रंग निचा अपहंग कह लगे आ भाई बिधी चंदा अज तो बाद बिधी चंद छीना गुरु का सीना प्रेम भगत पीना ते नाल तीजा बचन क्या कि कदे कमी ना है ते बिधी चंद ने हाथ जोड़ के क्या एक किरपा और कर दे अज तो बाद मंगण वाली बिरती खत्म हो जाए
साहब ने निवाजिया इथे तीजी जंग हुई मेरे गुरदेव इस जंग दे विच भी जिते ने सतगुरु ने इस जंग दे अंदर भी फतेह पाई साहब जी करतारपुर आए ने मेरे गुरु ने वसना दसिया उजड़ना नहीं आप नगर वसाए ने सिखां नू वसन दी गल कही सतगुरु ने करतारपुर गोइंदवाल अमृतसर उस तो इलावा श्री हरगोबिंदपुरा कीरतपुर साहब सतगुरु करतारपुर की धरती आए जिथे चौथी जंग हुई है। एक मैं अर्ज करा पहली जंग जिहड़ी अमृतसर दी होई है मैं सिर्फ पंछी झात निकलना पिया वा इस इतिहास विचों कई गल्लां इहदियां मैं छड़ना पिया वा। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब ने पहली जंग जिहड़ी लड़ी इहदे विच इक पठान सी पैंदे खां तुसीं सब उहदे नां तों जाणू करतारपुर दे नेड़े रहण वाला यतीम सी ते मेरे गुरु हरगोबिंद साहब दे चरणां विच आया ते साहब ने अपने पुत्रां दी तरह पालिया। जे अपने पुत्रां दी पोशाक बनानी एक पैंदे खां लई जे कीमती की भोजन तैयार करना पैंदे खां लई अपने कोलो दुध घिओ दी इहनू कमी ना रहण दित्ती ते सिख विद्वान कहिंदे ने इह इन्ना तकड़ा सी पैंदे खां पक्की जमीन ते तुरदा सी ते जमीन ते टोए पै जांदे सन। आ सिक्का आपां वेहने आ ना हथ दी तली ते सिक्का रखना ते अंगूठे नाल मसलना ते सिक्के दे उपर दे जिहड़े निशान ने उहनां नू मिटा दिंदा सी ते असवार भज्जी जाणा घोड़ा पूरी रफ्तार ते जाना इन्हें इको दम सिर थले डा के घोड़े नू हथां ते चुके इंज सटना जिवें कोई पंड तोड़ के जमीन ते सड़दा होवे ते जदों किते दो छाण भिड़दे होने बड़ा बहादुर सी दो छाण भिड़दे होने ते इन्हें भिड़दे छाणां नू सज्जे खब्बे हथ नाल सिंगां तों पकड़ के भुआ के परां सड़ दिंदा हुंदा सी। पर जदों कुश्ती लड़नी एक भाई बिधी चंद ते दूसरा गुरु हरगोबिंद साहब इन्हू ढांदा सी नहीं ते छेती किते किसे बंदे तो इह ढसदा नहीं सी हुंदा इहदी पिट नहीं सी लगदी इन्हें पिट लानी। पर गुरु हरगोबिंद साहब मैं जिस तरीके नाल पढ़िया हो सकदा तुहानू जानकारी वध होवे दावा नहीं गुरु हरगोबिंद साहब ने इन्हू अक्सर अखाड़े विच ढाणा ते जां भाई साहब भाई बिधी चंद पैंदे दी पिट लांदे सन। साहब ने यतीम जान के पालिया हुण देखो मेरे गुरु दे अंदर दी विशालता इत्थे कोई अल्लाह कह लै कोई राम कह लै कोई रहीम कह लै इत्थे शब्दां दी पाबंदी पिछे ईरखा नहीं पैंदे खां ने अमृतसर दी जंग विच रज के कमशान युद्ध विच अपने आप नूं तैयार करके साहब दे मोढे नाल मोढा जोड़ के फतेह लई परत के एक बंदे विच बड़ी वड्डी कमजोरी जिद्दन दाते दी कृपा नाल कुछ लै लैंदा है ना ते चंद्रा हंकार दा सप पहले ही खलोता हुंदा है आ सजना इहो जिहा डंग मारांगा जे ते बच गया ते समझ ली सिरे चढ़ गए हों ही तां मारनी है ना। एक दिन मैं शायद अर्ज कीती सी बुल्ला अनायत शाह कोल गया सी इक खिन विचों निकलन लगा ते बुल्ले ने जाके कहा सी महाराज मैनू अल्लाह ताला दे घर दी कोई बात सुनाओ ते अनायत शाह ने कहा खजूर ते चढ़ जा। वह समझ ही पै गया भी अल्लाह ताला की गल ते खजूर इहदा की संबंध। फिर उन्हें गल कही भी सजना पुराने सज्जन कहिंदे सन मुरशद की गल मन्नण विच ही लाभ वह कदी चढ़िया नहीं सी सजदा दा मुंडा चगड़े अमीर घर दा मुंडा वह जी खजूर ते थोड़ा जिहा चढ़िया पैर फिसलिया जमीन ते डिग्गा अनायत शाह वेहदा पिया सी यह डिग्गा वह ताड़ी मार के हस पिया ते बुल्ला कहिंदा मैं मुआ इहदे मुंह चो शब्द निकलिया मैं मुआ ते उहने एक गल कही बेटा मैं मुआ तो खुदा हुआ बस मैं दी सारा रपड़ी जिदन मैं मर गई तू ही खुदा है मैं मुआ तो खुदा हुआ पर पैंदे अंदर मैं उठी ए आम कहन लग पिया सी आ सिख की लड़ सकते ने जे मैं ना हुंदा ते अमृतसर की जंग नहीं सी जीती जानी मैं ना हुंदा इन्हां ने जित किवें लैणा सी। जिदन गुरु हरगोबिंद साहब नूं पता लगा ते साहब ने एक गल की पैंदे हर महीने तनखाह मिलेगी घोड़ा दियांगा बस्त्र दियांगा पर अज तो बाद तू साडे घर विच फौज दे तौर ते तू आउणा नहीं तू घर रह जिदन तेरी लोड़ पई असीं तैनूं जरूर सदांगे। साहब ने पैंदे तो बिना दो जंगा जितियां श्री हरगोबिंदपुरे वाली ते नथाणे दी ढाब वाली हुण पैंदे नूं इक गल दस दित्ती मता सोचे असीं खानदानी पठान ही जित सकने आ अज गुरु के सिखां अंदर इन्नी ताकत ही जे गुरु नानक दी कृपा होवे जिन्हां नूं कमजोर बोझ दिल कहिंदे ने इह वी जित सकदे ने। पैंदा करतारपुर साहब भी करतारपुर आए इत्थे पैंदे खां ने साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब दे दरबार विच आया एक सिख आया उन्हें सोहना घोड़ा सोहनी वर्दी सोहने शस्त्र लैके आंदे पैंदे खां ने कहा महाराज मैनू दे दिओ
साहब ने वर्दी दिती, शस्त्र दिते, घोड़ा दिता, ते जदों ने पाए साहब ने

0: परमेश्वर दे रंग रतड़े गुरमुखां दी संगत विच है।
1: प्रभु के गुण संतन ते सुने बैठे निकट जबे मिल पने।
0: इन्हने जदो ए बच्ची छोटी जी है ना पंजां विचों पता लगना किते कोई महापुरुष आए ने, किते कोई नाम बाणी भी जुड़े हुए गुरमुख आए ने, ते इस छोटी जी बच्ची ने ना उन्हां महापुरुषां दे कोल जाके बैठ जाए। भावे ओ गुरु के सिख होने ते बच्ची ने हाथ जोड़ के जो कुछ महापुरुषां ने अपने आप विच वार्तालाप करना, सत्संग करना, ते बच्ची ने ध्यान दे के सारे बचन सरवण करी जाने।
1: जीव जीव प्रत तीनों लोक नित पालत सब प्रभु अरोक।
0: ए बच्ची गुरमुखां दी संगत विच गई है ते महापुरुष जेड़े बंदगी करने वाले गुरसिख ने आपस विच वार्तालाप करदे ने, ते कुदरती तौर ते एदे विच कोई शक नहीं, माझे दी धरती मेरे गुरु नानक दी कृपा नाल निवाजी पई। गोइंदवाल साहब, तरन तारण साहब, खडूर साहब, सुल्तानपुर किन्ना भागा वाला सारा ए इलाका है। चबाल आपा बीड बाबे बुढ़े दी सन साहब किन्नी ए भागा वाली धरती है जिदे चप्पे चप्पे ते गुरु नानक साहब जी दी जोत दे चरण पए। कदी गुरु अंगद साहब दे रूह विच, कदी गुरु अमरदास दे रूह विच, कदी गुरु रामदास दे रूह विच, कदी धन गुरु अर्जन देव जी दे रूह विच, कदी गुरु हरगोबिंद साहब दे रूप अंदर मेरे साहब ने इस धरती नूं भाग लाए। कुदरती तौर ते महापुरुष गुरमुख जपण वाले इन्हां पिंडां विच जांदे होणगे। कवि जी कहिंदे ने अज गुरु के सिख बैठे ने ते इह छोटी जी बच्ची कोल जा के बैठ गई ते उत्थे वार्तालाप आरंभ हो गई। क्या तिन्ने भवन जिन्हां नूं लोक कहिंदे ने, जितनी भी सृष्टि है ना, ते इस सृष्टि दे जितने भी जीव ने सारियां नूं रिज़क देण वाला केवल एक परमेश्वर। इस बच्ची दे कन्नां विच आवाज पै गई कि हर एक दी पालना परवरिश केवल एक वैगुरु करदा है।
1: जो जिस जून जहां होए प्राणी तां देत भोजन गुण खानी।
0: ते ओ महापुरुष आपस विच वार्तालाप कर रहे सन कि भावे जीव किसे भी जून विच होवे, भावे कोई सर्प होवे, भावे कोई पंछी होवे, भावे कोई पशु होवे, पर मेरा वैगुरु इन्ना कु बेअंते ओ कीड़े नूं भी रिजक देंदा पे है, पानी विच रहण वाले जीव नूं भी रिजक देंदा पे है, ओ आसमान विच उड़न वाले पंछी नूं भी रिजक देंदा है। एदा मतलब जेड़ी गल कवि जी कह रहे ने कि गुरसिख आपस विच वार्तालाप करदे ने कि हर एक नूं रिजक देण वाला केवल एक परमेश्वर है। एदा मतलब ओ गुरमुख गुरु अंगद साहब दे इस शलोक दी शायद व्याख्या करदे होण कि नानक चिंता मत करो चिंता तिसी हे। कह लगे ए शलोक ढुकदा पिया, जल मैं जंत उपायन तिना पी रोजी दे, उथे हाथ न चली ना को किरस करे, सौदा मूल ना होवई ना को लै ना दे, जिया का आहार जियो खाना एओ करे, विच उपाय सायरा तिना पिसार करे, नानक चिंता मत करो चिंता तिसी है। क्योंकि गुरु अंगद साहब दी बाणी उचारण कीती जा चुकी है, सानू इतिहास विचों इशारे मिलणगे, पर खोज आपां गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी विचों करनी। ओ गुरमुख कह रहे ने आपस विच के हर एक नूं रिजक केवल एक मेरा वैगुरु देंदा है।
1: श्री गुरु नानक करियो श्लोक पठत विचारत सो प्रभ लोक।
0: कवि जी कहिंदे ने इह जिहड़े रब दे प्यारे लोक सन इन्हां विच कई पुछदे होणगे भी तुहानूं किवें पता लगा कि हर एक नूं रिजक जिहड़ा ओह परमेश्वर देंदा, हर एक जून दे जीव नूं देंदा, ते उहनां गुरमुखां विचों एक बोल पिया। इह बच्ची सब कुछ सुणदी पई है क्योंकि बच्चे दा मन इन्ना कु प्यारा हुंदा है शुद्ध। जिओ जिहा पूरना तुसी इहदे ते पा दिओगे ना, महाराज मेहर करे संगत दा पाणी मिलदा रहे ते इह रुख उसे पासे चका कर जांदा। बच्चे दा मन किन्ना कु कोमल है। आ साहिब ने बाणी विच इक बचन कीता है, कहिंदे ने रुख जमदा है ना ते तुसी उस रुख नूं जिहड़े पासे मर्जी चुका दिओ, ओनू सज्जे खब्बे जिधर चुकाना चाहते हो उधर चुका दो, पानी पाई जाओ, अखीर ते रुख जड़ा उसे पासे नू चुक जाएगा। ते साहब ने बचपन की गल करदिया ए भी कृपा की, कह लगे सजना जदो तेरे ते बाल उमर सी तेनू पता नहीं दुश्मन कौन है, तेनू पता नहीं

0: पितर कौन है जिन्हें प्यार करना तू ओदी झोली विच बह जाना। मेरे साहब कहिंदे ने उदो तेरे अंदर दवैश नहीं, एवें तू सियाणा बन गया। जे किते सारी जिंदगी उस बच्चे वर्गा तेरा मन रहिंदा ते तेरी कीमत तां करोड़ां रत्नां नाल भी नहीं सी पै सकदी। साहब ने बाणी भी जिक्र किया, कहन लगे कबीर जैसी उपजी पेड़ ते, क्योंकि पेड़ जदों निकलदा बड़ा कोमल। यही कारण मैं कई बार साहब की बाणी पढ़ना वा ना ते सोचना सतगुरु ने जवान की गल नहीं की, जदों भी गल करनगे बालक की करनगे, क्योंकि बाल सुभाए जदों कोई भुल होवे उदों गुरु कृपा करके बख्श देंदा है। आ छोटा जिहा बच्चा गोद विच बैठे ते कोई गलती कर लै मां झिड़के फिर झोली विच पा लैंदी है, ते जदों जवान बच्चा होके अपने बाप दे सामने आकड़े ते बाप कहिंदा सजना अपना राह पकड़ जा, मैं तां अपनी जमीन जायदाद विचों भी तेनू बेदखल कर देना। यह उही बच्चा है जिहड़ा बचपन विच बाप की गोद विच बैठ के दाड़े दे केस नूं भी हाथ पांदा सी पर बाप ने फिर भी छाती ना लाना। अज जवान हो के जदों बराबरी करके बोलदा ते उही बापू घर रखण नूं तैयार नहीं। साहब कहिंदे ने सजना उदों बाल उमर सी, अंदर दवैत नहीं। सतगुरु ने बाणी विच कहा कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभ है औड़, हीरा किसका बापड़ा पूजा ना रतन करोड़। अज ए बच्ची सुनती पई है, उन्हां महापुरुषां ने पुछया किसी ने भी केड़ा गुरु साहब का बचन है जिदे विच उन्हां ने कहा कि हर एक नूं रिजक देन वाला एक परमेश्वर है।
1: तिस्ते सुन कन्या दिल कीनो सोया बेस फल ले कर दीनो।
0: कबीर जी कहिंदे ने उत्थे फिर उस गुरमुख सिख ने श्लोक सुनाया जो गुरु नानक साहब उचार गए ने, ते ए छोटी जी बच्ची ने ना उस वक्त ध्यान नाल सुनिया ते कहिंदे ने सुनदिया सार इस बच्ची दे मन उत्ते उस श्लोक ने इन्ना कु असर किया, दृढ़ इरादा हो गया मना रब तो बिना दुनिया विच कोई रिजक देण वाला है। वो श्लोक केड़ा है? कवि जी कहन लगे मैं उस श्लोक नू इत्थे

0: ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਸੁਖ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਾਂ।
1: ਖਾਣ ਪਾਣ ਪਹਿਰਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਬਸਤਰ ਬੇਭੂਖਣ ਦੇ ਵਿਖਿਆਤਾ।
0: ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਨ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਬਸਤਰ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
1: ਸਭ ਤੇ ਸੁਣ ਤਿਸ ਕੰਨਿਆ ਕਹਿਓ, ਪਾਲਤ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਨ ਕੋ ਲਹਿਓ।
0: ਚਾਰ ਜਣੀਆਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੀ ਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਏ। ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ, ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨੀ ਮਿਲਾਉਂਦੀ, ਅੱਗੋ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚੋ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ।
1: ਦਾਤਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਇਕ ਰਾਮ, ਕਰੇ ਜਗਤ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਾਮ।
0: ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਗਤੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
1: ਸਭ ਦਿਨ ਸਭ ਕੋ ਭੋਗ ਭੁਗਾਵੇ, ਕਰ ਹਾਰ ਕੋ ਜੀਵਤ ਪਾਵੇ।
0: ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।
1: ਸੋਨਾ ਦੇ ਸਭ ਲਹੇ ਮਿਨਾਸ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਕਹਾਂ ਜੇਨ ਕੀ ਆਸ।
0: ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾ ਦੇ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਭੈਣੋ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਇਹੀ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਏ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਏ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀ ਉਪਰਿਆ, ਸਹਿਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗਾ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਹਰਿਆ, ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁੱਤ ਬੰਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸਕੀ ਧਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਨਨ, ਪਿਤਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਪੂ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁੱਤ ਬੰਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸਕੀ ਧਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉੜੈ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਸਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੂੰਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਉੜੈ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ, ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉੜੈ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਸਰਿਆ, ਤਿੰਨ ਕਵਣ ਖਿਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ। ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਤਾ ਜੰਤ ਉਪਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਧਰ ਉਦਕ ਮੈਂ, ਪਿੰਡ ਕੀਆ ਦਸ ਦੁਆਰਾ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸੇ ਦਿਸ ਦੇ ਦਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, जननी केरे उधर उदक में पिंड किया दस द्वारा, दे आहार अग्न में राख है ऐसा खत्म हमारा। कह लगे जेड़ा अग विच रोटी देंदा है एवे तू कहना फलाना बंदा देंदा है, अग विच जेड़ा रिजक देंदा सी ओही तेनू इत्थे रोजी पिया देंदा है। कह लगे कुम्मी जल में तन तिस बाहर, कछु कुम्मी पानी विच आंडे ओदे रेते ते पए ने, पंख खीर तिन नाही ना आंडिया नू खंभ ना ओना दे दुध दा प्रबंध, पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही, पा खान कीट गुप्त होए रहता ताचो मार्ग नाही। कहिंदे ने पत्थर दा कीड़ा पत्थर दे वेचे, कोई रस्ता नहीं जिस रस्ते आपां रिजक पहुंचा सकीए, देख तनिया जे पत्थर विच पैदा कीते कीड़े नू रिजक देंदा है तू बंदे दी आस ना करी, देण वाला केवल एक ओही आ। साहब कहिंदे ने बाणी अंदर पाखन कीट गुप्त होए रहता ताचो मार्ग नाही, कह तन्ना पूर्ण ताहू को मत रे जीड नाही, एवें जी मेरे मना तू डरदा ना रही। ए बच्ची कहिंदी नै भैणो तुसी भुलेखे विचो, ए सारी सृष्टि दी पालना कोई होर पिया करदा है, मैं ता गुरमुखां तो बचन सुन के आई हां। ओ ता कहिंदे ने आसन लोए लोए भंडार, ओदा टिकाणा हर इक लोक दे विच जो किछ पाया सो इक आवार। कहन लगी मैं ता बचन सुने ने महापुरुषां तो के रिजक देण वाला कोई मां बाप नहीं केवल एक वाहेगुरु है।
1: राव रंक गज चीटी जोई सबको दाता त्राता सोई।
0: कहन लगी देखो भेनो आ तुसी गरीब वल तको भावे मजदूरी करदा है, आखर ओ कखां दी कुली विच रोटी पका के खांदा साडा बापू ते नहीं देंदा, जे कोई तनाड़ राजा रोटी खांदा है ओनू ही मालक देंदा है। कहिंदी मुकदी गल की मेरे गुरु की बाणी कहिंदी है कीड़ी तो लै के हाथी तक सब दी संभाल मेरा निरंकार करदा है।
1: अपर दिखे समरथ है कहां जीवन जो पाले जै कहां।
0: कह लगी किदे अंदर समरथ है ओ मेरे वाहेगुरु जी दा मुकाबला कर सके, इन्हें जीवां नू कोई पाल सकदा है, किसे अंदर ताकत नहीं। शायद ए ही कारण मेरे गुरु नानक साहब जदों विस्माद भी जांदे ने ना ते एक गल कहिंदे ने दातिया मैं इस गलो हैरान हां, ओ तेरा घर की हो जाए जिस घर विच तू बैठा है, उस घर दे दरवाजे की हो जाने जिस दरवाजे विचों तू लंघना है। ते पुछया महाराज हैरानी क्यों, कहिंदे ने हैरान की तां इन्ने जीव पैदा करके सब दी संभाल करने, मैनू दस तां सही तेरा घर की हो जाए जिथे एक थां ते बह के सब नू रिजक देना है। असीं पढ़ने सो दर तेरा केहा की हो जाए तेरा दरवाजा, सो घर केहा की हो जाए तेरा घर, जित बह सब संभाले जिथे बह के तू सारिया की संभाल करने। साहब जी दे ए प्यारी बच्ची कह रही है गुरु नानक दी बाणी दी कृपा नाल के सब नू रिजक मेरा दातार देंदा है, कौन है जेड़ा ओदे तो बिना किसे नू रिजक दे सके।
1: एम सुन कन्या सब ही कहें हमको पित प्रित पालत रहें।
0: कहने एनी गल सुन के दूसरियां जेड़ियां भैणा ने ओ गुस्से विच आ गईयां, कहन लगियां चुप कर जा तैनू समझ ही कोई नहीं, असीं नहीं जानदियां कौन है रब देण वाला, सानू तां साडा बापू ही कपड़े देंदा है, सानू तां साडा बाप ही खान नू देंदा है, सानू तां साडा पिता ही हर प्रकार नाल संभालदा है।
1: नहि देखियो दे तो कित राम देओ जाए किस के कब धाम।
0: अब कहन लगियां असीं नहीं देखिया कि वाहगुरु कोई है किसे दे घर भी जाके रोजी देंदा होवे, कदी तके साडे घर अंदर रब आया होवे ते सानू आ के रोटी दे के जावे।
1: अन बस्तर सब करके त्यार किसको कौन देत किस बार।
0: देख साडा बापू ता सानू कपड़े देंदा है, रब ने कदी कपड़े सुवा के दिते ने, साडा बापू ता अनाज लिआउंदा है कई तरह दे फल लिआउंदा है, तू कहनी राम देण वाला है रब देण वाला है खुदा देण वाला है, असी नहीं देखिया किसे दे घर अंदर खुदा ए वस्तुआं लेके आवे।
1: एम सुन के कन्या लर परी जाए पिता के टेक सुध करी।
0: कहिंदे आपस विच गल करदियां करदियां ओ इन्नी कु दृढ़ अरादे वाली है, कहन लगी तर्क ना करो विश्वास करो के रिजक देण वाला वाहेगुरु है, जिन्हें शरीर दिता है ओदे बचना ते भरोसा कर लवो। शायद यही कारण कई वरी मनुख उस रब दी दित्ती हुई दात नू लेके असल विच मैं मेरा ढंग अपने इतिहास की विचार करन दा, जदो इतिहास की पंक्ति उत्ते गुरु की बाणी की मोर लग जाए ना ते गल पक्की हो जाती। साहब ने बाणी विच असल विच बच्चियां दे ख्याल नहीं, हर एक नास्तक मनुख की बिरती है कि रब वस्त्र देंदा है, रब सानू रिजक देंदा है, रब की सादा करन वाला है। ते मेरे साहब ने बाणी विच क्या कहन लगे, नहीं होए जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दिती बोले तात, जिन मन राख्या अग्नि पाए, वाजै पवन आख है सब जाए। मेरा गुरु ग्रंथ साहब कहिंदा रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार सिंगारिया, गर्भ अग्न में जिन्हें उभारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, पर जोबन भोजन सुख सूद, बिरत भया ऊपर सात सैन, मुख अप्याओ बैठ को देन, इन्ना कुछ लै के भी कहना कौन देन वाला है। ते मेरा गुरु अर्जन देव कहिंदा दातिया ए निर्गुण, ए तेरे गुणा नू नहीं समझदा, ए निर्गुण गुण कशु ना बूझे, बख्श ले हो तो नानक सीजे। देन वाला ओ रिजक वैगुरु वे, साहब ने बाणी विच इशारे कीते, इस पानी ते जिन तू करिया, माटी काले देवरा करिया, उकत सुरत लै जोत परीख्या, मात गर्भ में जिन तू राख्या। साहब ने बाणी विच कहा मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तै तुम राखण हारे, पावक सागर अथात लहर में तारो तारण हारे। साहब ने बाणी विच कहा माता के उदर में प्रतपाल करे, सो क्यों मनो विसारी है, मनो क्यों विसारी है एवड दाता, जे अग्न में आहार पहुंचावे। साहब ने बाणी विच कहा और की बात कहां कह तो सो, पेट ही के पात बीच बचावे। और रिजक देन वाला एक ही लड़ पईआं ते अगो कहिंदी है देखो जिन्निया मर्जी दलीला दे लो पर मेरे ते असर नहीं, मैं गुरमुखा तो एक बचन सुने है के देन वाला वाहगुरु है, कोई किसे नु रिजक नहीं देंदा।
1: हम सब कहें पिता ते खावत, ए किस बात अपर बिदतावत।
0: कहिंदे लड़दियां लड़दियां ए आणियां उठ पईआं ते बापू दे कोल घर गईआं, ते पिता बैठा सी अपने मंजे ते, ए विचारी भी पिछे पिछे तुर पई। चारा जनिया ने जाके पिता नू घेर लिया ते कहन लगियां पिता जी देखो आ किहो जिया गल्लां करदी पई है, असी बैठियां सा अज इकट्ठियां ते गल चल पई के साडा बापू सानू रिजक देंदा है, साडा पिता सानू बस्तर देंदा है, ते ए अगो होर तर्क करदी है।
1: जो प्रत पारे देत हमेश, लग तन ते जिन कीन विशेष।
0: कहन लगे ए तां गल्लां होर करदी है, आखदी है रिजक देन वाला कोई होर है जिहड़े साडे छोटे जे तन नू संभाल के रखे है, ते जिहदी कृपा नाल तन वड्डा हो रिहा है।
1: सुख सो शुभ आहार हम करही, किसु बात की चिंतना तरही।
0: कहन लगे असी फिर दलील दित्ती के नहीं, साडी प्रतपालना साडा बाप करदे, सुख नाल असी आहार करनिया वा, सानू किते रोटी दी चिंता नहीं।
1: ए न माने मत कह न्यारो, हम सब कहें कीनस निर्धारो।
0: कह लगी देखो असी सारिया ने इको ही ए आपस विच विचार कीती है के देन वाला साडा पिता है, पर एदा ता मत न्यारा है, साडी हां विच हां नहीं मिलांदी।
1: सुनत निरपत पित मूर्ख रोसा, नहीं सिर को लख्यो भरोसा।
0: कहिंदे ने कवि जी उको राजा भी मूर्ख है, ओनू ए समझ नहीं जेड़िया ए चार कहिंदियां ने ए अनजान ने, जेड़ी एक कहिंदी पई ओ सच कहिंदी पई। कहन लगे आपस विच मूर्ख बंदा जिन्हू समझ नहीं, एक वाहगुरु ते भरोसा नहीं।
1: अपने राजमान में फूला, प्रकृत कूल पे ते फूला।
0: किन्ने अपने आचार गज जमीन ते फुलिया बैठा, राज गद्दी ते फुलिया बैठा, एनू एना पता ही नहीं के देन वाला ता एक परमेश्वर है। मेनू भी रिजक ओने दिता है, राज भाग भी ओदा दिता होया है।
1: सब कन्या निज निकट हकारी, आक्षे समझने इच्छा तारी।
0: उस वक्त इन्हें सारिया बच्चियां नू अपने कोल बुला लिया, ए पुछन वास्ते भी इन्हों दे मन विच है की है, ए आपस में जेड़िया गल्लां करदियां ने इकलियां, आखिर ऐस बच्ची दे मन विच की बैठा है।
1: पृथक पृथक तिन बूजन लागा, कहो तू किसको भुगते भागा।
0: कहन लगे एक एक बच्ची नू पुछन लगा के दस तू कपड़े किदे दिते पानी है, रोटी किदी दिती खानी है, तैनू दुनिया दे सुख दा साधन किन्ने दिता है, तेरे तन ते जेड़े कीमती गहने पाए ए किसने तेनू दिते हन।
1: सब ने कहो पिता हम तेरा, सावे पर है दर्ब कनेरा।
0: सारिया उची आवाज विच कहन लगिया, पिता जी जेड़े तन ते बस्तर पानिया वा ए भी तेरे ने, जेड़ा आपा हथा विच गहने पाए ए भी तेरे ने, ते जेड़ा असी भोजन छकदिया वा ए भी ता तेरा बख्शा होया है।
1: ब्रित भारत नित दे दहारा, हम सब भुगते भाग तुहारा।
0: सानू देख पिता कोई फिक्र नहीं, आराम नल घर सुतियां वा, पर साडे जागण तो पहला भोजन तैयार है। एक दिन नहीं रोज तू सानू भोजन पकवान भेजना, साडी प्रतपालना तुसी कर दे हो।
1: निज पगनी सब ते पश्चाती, राज कोयर बोली इस भाती।
0: कहन लगे जेड़ी ओ बच्ची एक कहिंदी सी देन वाला रब है, ओनू पुछया दस खां किदा दिता तू खानी है, तैनू बस्तर कौन दिंदा है। ते परमेश्वर दे भय विच गुरु की बाणी विच भिजी हुई उस बच्ची ने ए बचन कहे हन।
1: हे पित भाग एक को दूबा, पुगत है ए नहीं कब हुआ।
0: लगी हे मेरे बापू एक गल ध्यान नाल सुन ले, कोई किसे दा दिता नहीं उखांदा, एक दे भाग कदी दूजा नहीं उखो सकदा। चेते रखी अपने अपने भाग सारे खांदे ने, तैनू समझ नहीं कदी वेखी के एक दा भाग एक दे मस्तक दे भाग दूजा खा ले। साहब ने बाणी विच कहे, कहिंदे ता रब दी कृपा है, एक मां दी कुख विचों दो बच्चियां दा जन्म है, एक विचारा दिहाड़ियां करदा पिया है ते एक जेड़ा राज पदवी ते बैठा होए। भाग आपो अपने ने, सतगुरु ने बाणी विच कहा निर्धन सरदन दोनों पाई, प्रभ की कला न मेटी जाई। साहब ने बाणी विच कहा आपन लिया जे मिले, सब को भागत होए, कर्मा ऊपर निबड़े जे लोचे सब कोई। बापू अपने अपने पार खांदा हर कोई, कौन किसे नू भाग देन वाला है।
1: निज निज भाग अदक हर घाट, भोगत जग में रंग सुराट।
0: ये गल वखरी के भाग हपो अपने ने, कोई 36 प्रकार दे भोजन रात नू खा के सौंदा है, ते कोई सुका प्रशादा खा के सौ जांदा है। अपने अपने भाग ने, कोई अपने तन ते खद्दर दे बस्त्र पा के सादे बस्त्र पा के जिन दिन कर लैंदा है, ते कोई एक दिन दे अंदर कई कई तरह दे बस्त्र बदलदा है। आपो अपने भाग ने, मेरे साहब ने सारे गल्लां बाणी विच कहियां ने, हजूर बचन करदे ने ना सतगुरु दे बचन। आपां पढ़ने आ कबू खाट सफेदी सवावै, कबू भूम प्यार ना पावै, ए तेरी रजा है मेरे मालक। किसे नू तू बस्त्र कीमती, किसे नू बिल्कुल मैरे बस्त्र देना। हे पिता भाग आपो अपने ने, अपने अपने भागां दा खांदे हां।
1: सुन पित क्रोध करियो और भारी, सब के सुनते गिरा उचारी।
0: इन्हने इन्नी गल सुन दी देर सी, मूर्ख बापू नू समझ नहीं पई। उस धी वल अखां लाल करके ने देखिया, क्रोध नाल एदा चेहरा भखन लगा, ते इको दम थिड़कदी जबान विच ए कहन लगा है।
1: अमुक रंक हम जात मझारी, तिसके पुत्र कष्ट तन भारी।
0: ते कहन लगा तेनू कौन रिजक देंदा है। कहन लगी एक परमेश्वर एक वाहगुरु। अपने भाखानी आ, फिर गुस्से विच आया कहिंदा चंगा जे अपने भाग तू खानी है, ए नहीं समझदी के मैं तेनू देना। ते साडी जात दे अंदर एक मनुख है जिदे पुत्र नूं कोढ़ दा रोग लगा होया, साडी बिरादरी विच रहिंदा है, तेनू समझ पै जाए कि देण वाला कौन है। प्यारिओ सिर्फ इको ही आ गल जे जेड़ी बंदे नूं रब तो दूर लै जांदी। साहब ने मनमुख दी परिभाषा ही दित्ती है, देंदे थावों दिता चंगा, मनमुख ऐसा जाणीए। साहब ने बाणी विच कहा दात प्यारी, विसरिया दात आरा, दात मिल गई दतार भुल गया। मैं एक खिन विचों निकलन लगा प्रकरण मिलदा, रहीम ने दो दोहरे कहे। एक नवाब सी, उन्हें थाली भर लेनी रुपया नाल सवेरी, सोने दिया मोहरां रखनिया, सारे बंदियां नू देखी जाना जदों भिखारी आने ना, ते अपनियां अखां नीवियां करके ते बुक भर के उहदी झोली विच पैसे पा देने। लोकां लंघी जाना, इन्हें कदी चेहरा तक के भिखारी वल देखिया नहीं, नीवी पाई रखनी। ते एक दिन कोई सज्जन लंघिया, ते उन्हें एक गल पुछी कहिंदा नवाब एक गल तेरी तो मैं खुश हाँ, रब दा भय मनना, लोकां नू दान पुन करना, पर जदों तू किसे दी झोली विच रुपये पाना ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਰਕੀਮ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੇ ਕਹਾਂ ਨਵਾਬ ਜੂ, ਦੇਨੀ ਐਸੀ ਦੇਨ। ਹੇ ਨਵਾਬ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੂੰ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਰ ਉੱਚਾ ਬੜਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਹੱਥ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਣਾ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਨੀਚੇ ਨੈਣ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਗੋ ਨਵਾਬ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਣ ਹਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਜਤ ਬੇਜਤ ਹੈ ਦਿਨ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਣ ਹਾਰ ਕੋਈ ਔਰ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਜਤ ਹੈ ਦਿਨ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਭਰਮ ਮੁਝ ਪਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤੇ ਨੀਚੇ ਨੈਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਤਾਂ ਸੋਚਿਓ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਵਾਂ। ਉਸ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਏ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇਰੇ ਭਾਅ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਲਵਾਨ ਹਨ।
1: ਹਾਥ ਪਾਵ ਅੰਗਰੀ ਚੜ ਗਈ, ਅਸਕੋ ਮੈਂ ਜਬ ਤੋਹੇ ਦੇ ਦਈ।
0: ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰਿਜਕ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਘੋੜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਚੜ ਗਏ, ਦੇਖਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
1: ਆਪਣ ਭਾਗ ਤਬ ਪੁੰਚਨ ਕਰੀਏ, ਨਰਕ ਸਮਾਨ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਭਰੀਏ।
0: ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਤੂੰ ਭੋਗੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇਂਗੀ।
1: ਸੁਣ ਕੰਨਿਆ ਨੇ ਪਿਤਕੀ ਬਾਣੀ, ਸੋਈ ਸੀ ਸਰੀ ਮਨ ਮਾਨੀ।
0: ਬੱਚੀ ਨੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਪੂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਤਨ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਘਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੂਲੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾਏਗਾ, ਪਿੰਗਲੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾਏਗਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਦੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਪਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਭਾਗ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ।
1: ਇਸਕੀ ਮਾਂ ਸਬਰ ਜਿਤ ਰਹੀ, ਤੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਿਸ ਕਰ ਕਹੀ।
0: ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਰੋਕਦੀ ਰਹੀ ਏ, ਆਖਰ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਤਾ ਨੀ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ ਹੰਕਾਰ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੜ ਲਾਨਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ, ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੜ ਲਾਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਰੋਕ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਗਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਆਖਰ ਭਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਏ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਂ ਵੀ ਹੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਹੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

0: एक यो जी खेड़ वरता दिती आ, वो बच्ची जड़ी अमीर बापू दे घर पैदा हुई, जिन्हें अपने बचपन विच अपने हाथ नाल कदी रोटी भी नहीं पकाई, अनेक नौकर चाकर ने अपने हाथ नाल कदी काम नहीं किया, अज वो पति दी टोकरी नू चोक के पिंड पिंड भी तुरी फिर दिए, ते केवल पिंड पिंड विच गई नहीं, पिंड पिंड विच मांग के अपने पेट नू भर दी है।
1: निकट ग्राम के देते उतार फिरे सदन ते ल्याए आहार,
0: किसे भी पिंड भी जांदी है उथे नेड़े जाके टोकरी उतार दी, आप पिंड भी जाके घर घर दे विचो मंग दीए, ते जितना कु भोजन उन्हां नू चाहिदा है ओदे नाल गुजारा कर दी है।
1: विचरत ग्राम ने सी प्रकारी आई गुर के चक एक बारी,
0: भाई संतोख सिंह कहिंदे ने ओ भागां वाली पिंडां विच विचरदी विचरदी अज ना गुरु के चक आ गई है, जेड़ा गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी नू कह के नगर वसाए, गुरु के चक दे नेड़े ए बीबी अपने पति
1: गुरु की लीना हारा पत जुत खाए दे सुख तारा।
0: कवि जी कहिंदे ने संगत विच गई है ते जदो गुरु की देग मिली ना, इस बच्ची ने ओ देग नू गुरु की संगत विचो लै के आई ते अपने पति दे मुख विच भी पाई है, नाले देग पाई नाले कहिंदी है मुख तो वह गुरु बोल, सानू ए दे दर तो बिना किसे दी टेक नहीं, सानू ए दे घर तो बिना किसे दी ओट नहीं, यही ता ओ दारी जेड़ा निमाणिया नू भी एक गल कहिंदा है कि विश्वास परमेश्वर ते रखो देण वाला ओ वे, यही ओ दारी जेड़ा यतीमा नू भी होका दे के कहिंदा है कि जे सिर तो मां बाप उठ गया किसे दी टेक ना रख, एक निरंकार दी टेक लै तेरे सिर दा साईं मालक अजे जींदा है, ए ओही दारी जदो दुनिया दे वैद हकीम जवाब दे देन ते जे ए नाम औखदी दे देवे ते ए तां रोगियां नू भी तंदुरुस्त कर देंदा है। अपने पति दे मुख विच इस बीबी रजनी ने गुरु की देख पाई है।
1: होने अगले दिन बदरी बन में खारी जाए तरी तव तिन में,
0: किन्ने अगला दिन चढ़िया ते मन विच सोचदी है मना गुरु दर ते भी लंगर चलदा पे, जदों मैं हत्थां नाल सेवा नहीं करदी पई जिवें अगे मंग के खानी हां किसे पिंड विचों जा के मंग लवां, जिथे बेरियां दा इक झुंड है मैं एक अर्ज कर दियां, जिथे हरिमंदर साहब अमृत सरोवर है ना इथे गुरु नानक साहब दे चरण भी पए ने, बाबा बुढ़ा जी गुरु नानक साहब पहली वारी इस बाबे बुढ़े नूं इथे मिले ने जदों बाबे दी उम्र 12 साल दी सी, यही दुख भंजनी बेरीए जिथे मेरे गुरदेव ने बैठ के इलाही बाणी दा कीर्तन कीता सी, मैं संखेप विच अज हरिमंदर साहब सरोवर की साई तुहाडे नाल करनी, गुरु नानक साहब सुल्तानपुर तो पहली उदासी आरंभ कीती है, जदों हजूर गोइंदवाल आए ने ना अजे नगर नहीं वसिया, इस घाट ते बैठे ने कीर्तन इथे भी होया, ते गुरु इतिहास कहिंदा है भाई मरदाने ने एक गल कही सी दात्या, थां बड़ी रमणीक है ते हजूर ने अगो क्या सी मरदानिया कदी कोई पुरख आवेगा ते वस दी होवेगी, इशारा कीता सी पुरख आवेगा वस दी होवेगी, साहब ने अगला टिकाणा फतेहाबाद कीता, उस तो अगे इथे पानी दी इक ढाब सी जिथे अमृत सरोवर है, 12 महीने इथे निर्मल जल खलोता रहिंदा सी, आम ऋषि मुनि भगती करन वाले इस पानी दी ढाब दे किनारे टिकदे सन, जिदन गुरदेव इथे आए ने पानी दी ढाब दे किनारे बैठ गए, जल छकिया ते कीर्तन होया ते इथे नेड़े पिंड सुल्तान विंड इथों दा एक मनुख सी भाई तारा, एदे बच्चे दा सी तमान इहनू किसे दस्या सजना, अज ते पानी दी ढाब दे किनारे कोई महापुरश आया जिहड़ा किसे दे घरों मंग के नहीं उह खांदा, जिहड़ा पानी दे किनारे टिक के किसे रब्बी रंग विच रंगिया है, भाई तारा प्रशादा लै के चला गया, सतगुरु नू लंगर छकाया, साहब ने कीर्तन कीता ते भाई तारे ने एक बचन कहा सी, कहन लगा महापुरशो ए फकीर बाबा तेरे बचन सुन के अंदर नू ठंड पैंदी है, तू कुछ दिन इथे टिक जाना, तू किन्ने भाग लाए ने धरती नू ਤੇ ਸਿੱਖ

गुलाम सन और रणजीत नगारे ते चोटा पै मारदे सन। जिन्हां दे घरां विच कदी उच्ची सांह नहीं सी लै दिता जांदा उन्हां दे सिर ते अज परे पै झुलदे सन। मन दे उत्ते इन्नी कु ईरखा दी अग बली कि इन्हां लोकां नूं जिन्हां नूं गुरु है चुकदा है कल नूं साडी रियासत काबू ना करन, इस तों पहला गुरु गोबिंद सिंह नूं राह विचों साफ कर दिता जाए। कारण सिर्फ एक आ कि चीजां नहीं दित्तियां। उधर गुरु गोबिंद सिंह आनंदपुर साहब की धरती ते टिके ते दो रियासतां सन बड़ियां नेड़े। मैं थोड़ा जिहा इतिहासक पक्ष लै रहा। एक शहर है हिमाचल विच नाहन, इहनू अज भी शब्द उत्ते वरदे नाहन इतिहासक गुरुद्वारा है। इहनू उस वक्त सिरमौर भी कहा जाता सी। सिरमौर ते श्रीनगर, नाहन का राजा सी मेदनी प्रकाश, श्रीनगर का राजा सी फतेह शाह। फतेह शाह की लड़की की मंगनी हो गई सी भीम चंद के लड़के नाल। फतेह शाह की राम राय नाल बड़ी सांझ सी। राम राय की दिल्ली दरबार भी सी ते धक्के नाल फतेह शाह ने मेदनी प्रकाश का जिहड़ा इलाका सी उहनू अपने कब्जे विच लै लिया। मेदनी प्रकाश सोचदा एक पासे भीम चंद नाल इहदी रिश्तेदारी, दूसरे पासे दिल्ली दरबार विच इहदी सांझ, तीजा राम राय वर्गा करामाती इहदे पिट ते। मेरे गरीब का तो दुनिया विच कोई है नहीं। जदों चिंता ने इहनू खा लिया फिर किसी ने सलाह दित्ती, सजना जे इन्हां सारिआं नाल कोई टक्कर लै सकदा है ते आनंदपुर का वासी गुरु गोबिंद राय उहदे चरण अपने घर विच पवा। जिथे गुरु गोबिंद राय खलो गया दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उहदे नाल आ के टक्कर लै सके। तवज्जो दिया जे साहब आनंदपुर साहब ने ते राजे फतेह शाह दे नाल जिहदी ईरखा लड़ाई आपसी मेदनी प्रकाश दी, इन्हें पत्रका भेज के कहा गुरु गोबिंद सिंह मेरा इलाका बड़ा सोहना रमणीक है ते जे कुछ दिन तुसी आ के चरण पाओ ते मेरी धरती दे भाग जाग पैण। साहब उहदी पत्रका नूं सुण के 500 सिख अपने नाल लै परिवार नूं लिया ते अनंदपुर पहुंचे ने ते मेदनी प्रकाश ने दुख रोया, महाराज मेरा जीना हराम कर दिता है फतेह शाह ने। ते साहब ने श्रीनगर तो फतेह शाह नूं बुलाया ते राजा मेदनी प्रकाश दोनों नूं इकट्ठे बिठा के आपस विच सुलाह करा दिती। फतेह शाह ने जिस इलाके ते कब्जा कीता सी उहने मेदनी प्रकाश दा ओ इलाका वापस कर दिता। दोनों ने गुरु की रज के सेवा कीती। इत्थे फिर साहब कुछ दिन ठहरे ते महाराज फिर विचित्र नाटक विच कहिंदे ने, देश चाल हम ते पुन भई शहर पावटे की सुध लही। कहिंदे ने असी अपने देश नूं छड्डिया, हुण तुंगाणी दा जिहड़ा प्रसंग दसम ग्रंथ विच उहदे आधार ते, देश चाल हम ते पुन भई शहर पावटे की सुध लही, कलंदरी तट करे बिलासा कलंदरी दर ते यमुना। कहिंदे ने यमुना नदी दे कंढे बैठ के असी कई खेड खेडियां, उत्थे रब दी याद भी जुड़े। जिहड़ा तुसी सवेरे नितनेम विच जाप साहिब पढ़दे हो ना कि नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग कृपाले नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे, ए 199 छंद ते 22 199 बंद ते 22 छंद ए साहिब ने पौंटा साहिब दी धरती ते बैठ के उचारे। जिहड़ी चौपाई पढ़ने परणवो आदि एकंकारा जसल मैयल कियो पसारा, ए पौंटा साहिब दी धरती ते उचारी। सवैये पढ़ने श्रावक शुद्ध समूह सिधान के दीनन की प्रतपाल करे, यह उस धरती ते उचारे। 33 सवैये जागत जोत जपै निशबासुर, 20 कबित खूक मलहारी गद गदा विभूतारी, यह सारी बाणी जिहड़ी है अकाल की उस्तत विच मेरे गुरु गोबिंद सिंह ने यमुना के कंढे ते बैठ के उचारी। साहब कहिंदे देश चाल हम ते पुन भई शहर पावटा की सुध लई, कलंदरी तट करे दिलासा अनक भांत के पेखे तमाशा। उथे फिर साहब ने एक जिक्र किया कहने तय के सिंह घने चुन मारे, सिंह दर ते शेर। कहिंदे ने ओ शेर जेड़े लोकां दे घरां विच पशुआं नूं जीआं दा नुकसान करदे सन, गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे ने एक नहीं भावे उत्थे गुरुद्वारा पौंटा साहब नेड़े इक ही शिकार कारण ते शेर दा शिकार किया। पर विचित्र नाटक के मुताबिक साहब कहिंदे ने तय के सिंह घने चुन मारे, चुन चुन के वंगार वंगार के जेड़े शेर सन उन्हां शंखेरां दा गुरु गोबिंद सिंह ने मुकाबला करके आप उन्हां दा शिकार कीता। हालां उम्र चढ़दी जवानी विच ने तय के सिंह घने चुन मारे, होर की मारिया रोज रीश बहु भांत पधारे, जेड़े रिछ सन रोज सन जंगली जानवर बघियार सन, चुन चुन के उन्हां नूं घेर के शिकार कीता।

जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ा तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंधक मेरा सखा सखा जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो हो आपे हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे तन तन गुरु नानक जन केरा

गुरु अर्जुन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक, श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक, श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी, गुरु हर कृष्ण मनावो बहोरी,

माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एकंकारा सतगुरु तेह

0: ऐसा जिन प्रेम धर के
1: गुरबाणी कर पाठ
0: गुरबाणी का पाठ कर रहे
1: होके उल्टा ही पुत्र जब
0: राम राम उल्टाती निकी मुसलमान की सा देवी मान की कहता
1: त्याग दियो लाख साठ
0: मूर्खताई है समझ करके गुरु नानक की बाणी उल्टाई है छड़का मारा राम राम।

मांगे भी श्रावण जो करके श्री मुक्तसर साहब तो अठको रे जिसका नाम मते भी श्रावण करके मशहूर थी। इतने सतगुरु नानक देव महाराज साहब सच्चे पातशाह पुजे सन। चरण कवल गुरुद्वारा गुरु साहब का बनिया होया है। इस स्थान के महाराज साहब के माता पिता माता सुभराई जी ते पिता फेरू मल जी इन्हों के घर गुरु साहब जी की कृपा की लोड़ रखते सन। पुत्र की आस थी उन्होंने गुरु साहब के चरणों की शरण आए। सतगुरु नानक देव के चरणों को उन्होंने माता पिता ने पै के बेनती की गरीब नवाज श्रेष्ठ भागों वाला आपकी बख्शिश आला साढ़े घर आप पुत्र बख्शो। सुन के सतगुरु नानक देव महाराज साहब जी ने बहुत प्रसन्न होकर वचन किए कि साड़ी गद्दी के मालिक इन्हों का नाम तुम लहना रखोगे ये नाम वाले हो सतगुरु महाराज साहब बख्शिश करके जो आ गए। एक साल तो बाद 1561 बिक्रमी सी उस वक्त साहब सिंह जी सतगुरु अंगद देव महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ने उस वक्त बाबे फेरू मल के घर में भाग लाने वास्ते माता सुभराई जी की कुख में सफर करने वास्ते अवतार धारण किया। गुरुवार सतगुरु सच्चे पातशाह दुनिया च प्रगट इस तरह होए जिमें साध संगत जी सत के संतोख तो दया धर्म विचार के गुणों का अगे काल ही पिया होया सी। गुरु महाराज साहब ने सारे गुण दुनिया जो आपके जन्म के नाल ही प्रगट कर दिते। गरीब नवाज के नृत्य जानी वराग के वेत दोवें नृत्य ही महाराज के सज रहे हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह के सर्वा के विश्वास रूपी सुंदर कर्म सज रहे हैं। आपके दान करने तो सेवा रूप हक सज रहे हैं। उद्यम करना गुरु की आज्ञा भी चरण रूप चरण दोनों लग रहे हैं। इस प्रकार सारे अंगा गुणों के समेत गुरु साहब ने अवतार धारण किया। सतगुरों के अवतार धारण तो साहब संगत जी माता पिता ने बड़ी खुशियां मनाईया। आज भी गुरु साहब की कृपा गुरु नानक की कृपा नाल बालक अवस्था जी माता पिता की गोद में खेल दे रहे समा पा के महाराज साहब सच्चे पातशाह का शरीर वड्डा हो गया। वड्डा होने तो देवी चंद जो खत्री सी इस खदूर साहब के निवास करने वाला उसने ये मते की सराह जाके बाबे फेरू मल के पुत्र बाबा लहना जी के ताई अपनी पुत्री का नाता कर दिता। नाता करने तो गुरु महाराज साहब जी की शादी हुई। सतगुरों के महल साधी माता का नाम माता खीरी भी होना सब इस प्रकार सच्चे पातशाह जी ने कुछ समा बतीत किया। फिर पिता जरा सचखंड गौन कर गया। बाबा फेरू मल जी बलोचा की धार उस वक्त आई। वो बलोचा की धार आने तो साहब सिंह जी तीन सारा बलोचा ने लोग धारा माया कर रहे आके बलोचिस्तान उन्होंने आके सारा पिंड फिर करता उजाड़ता। उन्होंने फिर पिया साहब संगत जी हूं तक फिर नांगे ने आवाज किया इस करके नांगे भी नहीं उस सराह करके बजता है। तो पहला मते की सराह हरी के मते की सराह उसका नाम से हूँ संत गुरमुख सुनाने अगे थोड़ा जा गुमज महाराज साहब सच्चे पातशाह की यादगार फिर उसे बनिया होया। संत गुरमुख सिंह साहब जी ने जिन्हों बाबिया ने इतों की सेवा सन साधु सुना ने सारे मिलकर महात्मा ने की है उस स्थान की सेवा सारे दुनिया ने मिल करके गुरु साहब का बड़ा आलिशान जन्म स्थान मनाया। उथे नांगे की सराह एक सरोवर सुंदर बनाया है। होर भी इमारत बनाई है लंगर के स्थान बनाए है। ये बड़ी भारी चढ़दी कला की सेवा संत महाराज तो गुरु साहब ने करवाई है। इस प्रकार साहब संगत जी गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी जदों उत्थे निवास

0: याद करिए सबे पर श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज अकाल जो
1: जाग रहे हैं
0: श्री गुरु ग्रंथ प्रकाश।